श्रोता मित्रों, आप समरिया चौक गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके 102.8 FM पर लूटन डस्टेबल आउट एंड रिजिस लेटन बजट एल्सबरी मिल्टन किंग्स अलोडेव मिल्टन किंग्स न्यूपोर्ट पेग्नल नॉर्थम्पटन टोच में आ बाजू फरी पाचा पाचा आए एम कही है कि डबो जमणो कर पाचो आव तो ये वांधो नहीं सीधा बेडफर्ड बाजू बेडफर्ड थी पची मिल्टन की ना ना पाचा मिल्टन किंग्स है बेडफर्ड थी आ बाजू हिचिन बाजू जवा स्टीवन जब बाजू लेचोत बाजू वेलिंग गार्डन सीटी अनेक आजूबाजू विस्तारों में आपनु स्वागत है या तो पची दुनिया कोईपण खूणा में सांभता है आपनु स्वागत है। हलो लिस्बन, हलो पोर्चुगल, केम छो तमे बधा? मजा में छो ने? फूटबॉल जो छो के अरे धना धन के हवे क्रिकेट बंद थयो के आपणे बीजू क्रिकेट चाले छे अने फूटबॉल ए धमाके धारा के चाले छे? क्यां छो तमे? कई बाजू? कोई संदेशो मोकलता रहेजो अने आपनी कोई फरमाशो तो बोलता रहेजो। अच्छा, बीजू खास है कि आपने जणावो के घणी वखत आपणे जुदी जुदा शब्दों में बधी वातो करता होय पण गजलनी पण वात करी लईए ने?

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवार अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे। समय पन जातो जाए छे, गीतो पन गणाय छे अने वातो पन अधूरी रही गई छे। तो सांभळीए

श्रोता मित्रों, आप समरियाता गुजरात कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे रात 8-10 कलाके आ तो गुरुवार फरी पाचा अपनी सेवा में जता जासु। हूँ आपनो सेवक कमलाचार्य, त्या सुधी शुभरात्रि कुआरी आवजो। बाय बाय। एम केम रहो, सावधान रहो, स्केमर्स थी दूर रहो।